मेहमानों को खुश कर जाए। मजेदार लज्जतदार सास्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, जब जी चाहे शौक से खाए, करम को रम सेक के खाए, तल के खाए। मजेदार लज्जतदार सास्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़।